प्यार पिता देवेगा, पड़ोसी नहीं दे सकता। जो स्वाद अंब विचों आवेगा, अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख, जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकदा है, संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकदा। ना मां ना बाप, ना भैन ना भरा, ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डा है। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ, लहंदे तों लैके चढ़दे तों लैके लहंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ, गुरु वर्गा प्यार।

इस ताल दा नाम ध्रुपद है, राग दा नाम तो तुसी सुनी चुके हो। साहब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गरीब निवास जी दा उचारिया होया पवित्र शब्द है। राग बिहागड़ा दी वार दे विच्चों ए शब्द है। श्लोक मल्ला चौथा, बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुरु सेवे ठवर ना पावे मर जम्मे आवे जाहे, बिन सतगुरु सेवे फिक्का बोलना नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुरु सेवे जमपुर बद्धे मारिए मुंह काले उठ जाए। चार पंक्तियां दा ए शब्द है। आप जी ने अस्थाई ध्रुपद दी सुनी है, अंतरा हुण लगा के फिर इसे शब्द नूं द्रुत चाल विच तीन ताल विच पढ़ांगे, एन टाइम दे उत्ते समाप्ति करनी है। प्यारी साध संगत, मैं आप संगत जी वल्लों श्रोमणी कमेटी दे प्रबंधकां नूं लख लख वधाई देना, जिन्हां ने अज दा इह समागम गुरमत कीर्तन दरबार रागां दे विच राग दरबार जिसनूं कहिंदे आ उह करवाया है और बड़ा ही उद्यम कीता है। यह बड़ा शुभ कर्म है जो इन्होंने प्रबंधकां ने कीता। बहुत ही साड़ी आसा दे उत्ते इन्होंने सही साड़ी आसा पूरी कीती है, आसा नूं चंद लाए ने। गुरु कृपा करे इसे तरह ही इस तरह के प्रोग्राम करवांदे रहन, बड़ी खुशी हुई है। सो आप जी हुण अगलिया पंक्तियां दा कीर्तन अंतरा श्रवण करो। बिन सतगुरु सेवै ठवर ना पावे।

सतगुरु सेवे बिन सतगुरु बिन सतगुरु से बिन सतगुरु सेवे बिन सतगुरु सेवे फिक्का बोलना बिन सतगुरु से बिन सतगुरु सेवे नाम नाम से मन आ

साध बहुत तेरे मिठे हम में कोई ना साध बिन साध ना दिसे जग विच कोआ रहो संत हो डोर।

जगत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहा, तिनके गुण हो क्या कहा, गुरुदेव मिला।

नानक सिखे बोलिए तन मन विका हो सिखो विका जरिए विका विकी सोए सिखा तो